0: गबनू हो लगली गबनू पकड़ी गलरा तिबड़ा पानी गबनू बागानी मागे लगला भरे
1: Yeah.